कहेंगे। वो एक आम मिसाल है ना, आप डोनेशन जब ही दे सकते हैं जब आपके पास जेब में पैसे हो, जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप डोनेशन कहाँ से देंगे। वो लैंग्वेज जो आपको आती ही नहीं है तो आप कैसे सिखाएंगे, आप वो सिखा ही नहीं सकते। तो इसलिए पहला मरहला जो हमने आपको तकलीद का बताया, बच्चों में काम करने का बताया, साथ साथ अब हम ये बता रहे हैं कि यही वो दौर है, यानी फर्स्ट 7 ईयर्स में बच्चों पे जो हमें काम करना है वो उनके आदाब सिखाने हैं, उसको ज़िंदगी गुजारने के इस्लामी आदाब सिखाने। सिखाने से मुराद ये कि हम खुद भी जिए, नहीं आता तो सीखें और सिखाएं, या उसके लिए कोई मुरब्बी रखें कि जो उसको सिखाए आदाब, ताकि वो एक रिफाइंड पर्सनालिटी बने और वो एक अच्छा इंसान बने, और हम अपने आप को भी एजुकेट करें और सोसाइटी को भी एजुकेट करें, ताकि हम एक सिविलाइज ज़िंदगी गुजार सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

फैसिलिटीज मिलेंगी। इंतज़ार करते हैं कि हमें लोग बुलाएं, वेलकम करेंगे तो काम करेंगे, नहीं, काम करते चले जाओ, लोग तुम्हारा वेलकम करते चले जाएंगे। एक बेहतरीन जाहिदाना फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी, ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। आपके इंतकाल के बाद ये रिवायतों में है, बाज़ रिवायतों में नक़ल किया गया है, ख़ुसूसी तौर पर मशहूर फ़कीर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मोहम्मद कादिम तबातबाई यज़दी, जिन्होंने उरवतुल उस्का को तंजीम किया। आज जितने भी मराज कराम हैं उरवतुल उस्का पर हाशिया लगाते हैं, उरवतुल उस्का पर अपनी तौज़ील मसाइल, जो असल उनकी तौज़ील मसाइल है वो उरवतुल उस्का के साइट पर जो लिखते हैं उसी को फतवों में कन्वर्ट किया जाता है, बेस है तमाम मराज कराम के लिए। उन्होंने अपनी किताब में इन अशार को मौलाए कायनात के नक़ल किया है कि मौलाए कायनात ने बे एजाज इमामत हज़रत सलमान के सराहाने पहुँचे और आपके कफन पर या आपके कब्र पर मौलाए कायनात ने ये दो शेर लिखे हैं। ये ज़िंदगी बताती है हज़रत सलमान फ़ारसी की और परवरदिगार आलम के अता पर इंसान का यकीन बताता, वो ताकीद करते हैं तुम भी अपने कफन पर यह अशार लिखो, अपने कब्र पर यह अशार लिखो जो मौलाए कायनात ने सलमान फ़ारसी के कफन पर या कब्र पर अशार लिखे। वो दे शेर या वफ़त तो अलल करीम बग़ैर ज़ादिन, ऐ सलमान फ़ारसी तुम्हारे पास दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो तुम अल्लाह के बारगाह में ले जा सकते थे। दुनिया के मटीरियल वर्ल्ड से हम क्या ले जा सकते हैं मरने के बाद, इस दुनिया से क्या ले जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें ले जा सकते हैं, जितनी चीज़ें हमारे पास हैं लोग उन चीज़ों को हमसे ले लेंगे, अभी दम निकलता नहीं है मीरास बट जाते हैं, अभी सांस इंसान के बदन से निकलती नहीं लोग प्लान बना लेते हैं। किसी बुज़ुर्ग एक स्कॉलर ने कहा कि बीवी ने शौहर के इंतकाल के करीब अपने बेटे को बुलाकर कहा बेटा इसके हाथ से वो कीमती अंगूठी निकाल लेना, इसलिए कि जाएगा उसको घुस लेने जाएंगे पता नहीं कौन उतार लेगा, उसकी हयात की आरज़ू नहीं है, उंगली से अंगूठी निकाल लेने की आरज़ू होती है। इंसान इस मटेरियल वर्ल्ड से ले जाएगा तो इस दुनिया से क्या ले जाएगा। अलल करीम बग़ैर ज़ादिन, तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो बग़ैर आप तुम इस दुनिया से ले जा सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला करीम की बारगाह में मिनल हसनात वल क़ल्ब सलीम, अल्लाह हमसे दो चीज़ें मांगता है क़यामत के दिन, नेकियां ले आओ और पाक दिल ले आओ, साउंड हार्ट ले आओ, दो चीज़ें गुड डीड्स और साउंड हार्ट ले आओ। मुश्किल होता है नेकियां ले जाना भी मुश्किल और साउंड हार्ट का ले जाना भी मुश्किल है। वो हम लोग घबराओ नहीं, अल्लाह से नहीं घबराना, तुमने वो मेहनत की है, कोशिश की है, नेकियां कमाने की कोशिश की, दिल को पाक, ये गवाही दे रहे हैं इमाम सलमान फ़ारसी के अकीदे की, सलमान फ़ारसी के ज़िंदगी की गवाही इमाम देकर कह रहे कोई बात नहीं। वह हमलुज़्ज़ाद अक़बा कुल शैइन इन्क़िदा कानल वफ़ूद अलल करीम, अगर अल्लाह जैसा करीम हमें बुला रहा है ऐ सलमान वहाँ ना ले जाना, ऐब नहीं है वहाँ ले जाना है। अल्लाह करीम है तो कोई अगर बड़ा आदमी आपको इनवाइट करे तो उसके घर में ले जाना है वह ना ले जाना है, नहीं घबराओ नहीं, अल्लाह इतना करीम है कि तुम्हारी कोशिशों को कबूल कर लेता है, तुम्हारी इंटेंशंस को कबूल कर लेता है, तुम्हारे इरादों को कबूल कर लेता है, घबराना नहीं। अल्लाह से बड़ा करीम कौन है, अल्लाह से बड़ा करीम कौन है। वो कहता है तुम सोचो, कोशिश करो, तलाश करो, इरादा बनाओ, दो कदम चलो, हम तुम्हारी कोशिशों को, इरादों को, इंटेंशंस को एक्सेप्ट करते हैं। और कभी कभार एक छोटा सा काम अल्लाह तबारक व तआला सिंसियरिटी के नतीजे में इतना बड़ा बना देता है, इंसान की नजात मुमकिन उसे एक छोटे से काम के नतीजे में हो सकती है। तो सलमान फ़ारसी को न तन्हा आपने फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी, ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारी, आपके ईमान और आपकी ज़िंदगी की गवाही वक्त का इमाम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। और तीसरी सिफारिश मन अकूल अलहक व इन काना मुर्रा, पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा है ऐ सलमान हमेशा हक बोलना, सच बोलना, मुमकिन है सच बोलना तुम्हें कड़वा लगे, तुम्हें कड़वा लगे जी।

और मैं अगर सच बोलूं तो मुझे भी कड़वा लगता है, कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोगों को कड़वा लगता है, बिजनेस में फ़र्क पड़ जाता है, मसलहत में फ़र्क पड़ जाता है। आसान नहीं है सच बोलना, हक बोलना, हमेशा हक बोलना आसान काम है, लोग दुश्मन हो जाते हैं जी। इंसान तो उसके बाद एहसास करता है चाह काश में ये बात ना कही होती, लेकिन अगर हक है जो तुमने कहा है वो हक है। قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا, अगरचे कड़वा है हक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों की ज़िंदगी में असर करता चला जाता है, वो करता चला जाता है। हक बात हमेशा करते चले जाओ। और हज़रत सलमान फ़ारसी ने इसी के साए में ज़िंदगी गुजारी। हक बोलना है, गाली बकना नहीं है, गाली बकना हक नहीं है। बड़ा खूबसूरत जुमला किसी स्कॉलर का, हक बोलने में और बदतमीज़ी में फ़र्क है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करना और सच बोलने में ज़मीन ता आसमान फ़र्क है जी। कभी कभार इंसान ऐसा लहजा अपनाता है जिस लहजे के नतीजे में हक बात भी बुरी लगती है लोगों को। हक बात नहीं होती जहाँ अंदाज़ बदल जाता है। अंदाज़ अच्छा हो तो इंसान के हक बात की तासीर भी नज़र आती है। सलमान फ़ारसी ने हक बात कही पैगंबर इस्लाम की वफ़ात के बाद। आप एक नॉन पर्सनालिटी थी मदीने में, मौलाए कायनात के आप आशिक थे, मौलाए कायनात की विलायत को मानने वाले, मौलाए कायनात की इमामत को मानने वाले। किसी ने कहा आप असहाब का तस्किरा क्यों नहीं करते, हम कहते हम असहाब का तस्किरा सबसे ज़्यादा करते हैं। जिन असहाब को आपने छोड़ दिया है हम उस असहाब को गले से लगा लिया। विलायत के साए में सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्बर, अम्मर, क्या ये सहाबी नहीं है? सहाबी क्या है? रसूल के कंपेनियंस नहीं है? इनकी बात होती क्यों नहीं है? इनका तस्करा क्यों नहीं होता है? ये आशिक़े मौलाए कायनात है। विलायत के रास्ते पर इन्होंने साबित कदमी दिखाई, हक बात कही, इनको परेशान किया गया, इन पर जुल्म सितम ढाया गया, लेकिन हक बात से कहने से कभी ये मुकराए नहीं। अबू ज़र को शहर से निकाल दिया गया, मदीने से शाम, शाम से मदीना, मदीने से रब्ज़ा। किस जुर्म में, किस जुर्म में? हक बोलने के जुर्म, अली की विलायत के ऐलान करने के जुर्म में निकाला गया। गरीब पैदा हुए हज़रत अबू ज़र, गरीब इस दुनिया से चले गए। सराहने कौन था हज़रत अबू ज़र के, आपके 4 साल या 7 साल बेटी के अलावा दश्त में, सहरा में, डेजर्ट में कोई अबू ज़र के सराहने नहीं था। वहीं पर दम निकल गया अबू ज़र का। तो मदीने में लोगों के दरमियान हज़रत सलमान फ़ारसी बुलंद आवाज़ में कहते थे कि अगर तुम लोग अली की विलायत को कबूल कर लेते तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देता। बरकतें, रहमतें, ब्लेसिंग्स विलायत और इमामत के साए में इंसान को नसीब होती है। सलमान फ़ारसी ने भी बांग दोहल ऐलान किया। और चौथी नसीहत, वन असला रहमी व इन अदबारत। अल पैगंबर इस्लाम ने मुझसे कहा ए सलमान, रिश्तेदारों से मिलते रहना, जुड़े रहना, चाहे वो तुमसे दूर होते चले जाए। रिश्तेदार मेरा भाई चाहे मुझसे दूर होना चाहे, दूर भागता रहे, तब भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे जुड़ता रहूं। वो मुझे बुलाएं या ना बुलाएं मैं जाता रहूं, वो मुझे सलाम करें या ना करें मैं करता रहूं, वो मेरी रेस्पेक्ट करें या ना करें मैं उनका एहतराम और उनकी रेस्पेक्ट। बहुत मुश्किल मरहला होता है, बड़ा जिगरा चाहिए, जिगरा बड़ा पित्ता चाहिए कि अगर इंसान से कोई दूर भागता भी रहे। और पैगंबर साहब फरमाते सलमान उनसे तुम अपने रिश्ते को बाकी रखना। क्यों? इससे क्या होता है? इससे जेलसी ख़त्म हो जाती है, एनिमिटी ख़त्म हो जाती है, दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक ना एक दिन ज़रूर वो बंदा तुम्हारे काम आएगा, ज़रूर काम आएगा। भैया नमाज़ें मंडे के दिन नमाज मगरिबैन के बाद तकरीर में एक मैंने एक जुमला कहा, जैसे गंदा पानी होता है, गंदा पानी हमेशा काम आता, कभी कभार डर्टी वाटर कभी कभार यूज़फुल हो जाता है। तो क्या यूज़ होता है? क्या दरख्तों को हम पानी दे सकते हैं, फार्मिंग के काम आएगा डर्टी वाटर, गंदा पानी फार्मिंग के काम आएगा, एग्रीकल्चर के काम आएगा। जब तकरीर ख़त्म हुई तो एक मोमिन बंदा मेरे करीब आया, मौलाना एक और काम भी हो सकता है इससे, क्या हो सकता है? उसने कहा आग बुझाने के काम भी आ रहा है। तो आग बुझाने के लिए भी मैं गंदा पानी काम आता है। कभी कभार रिश्तेदार मेरा बुरा है, मुझसे दूर भाग रहा है, मैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा रहूं, एक ना एक दिन ज़रूर वो बंदा मेरे

इन अदबरत, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कहने वाला तुमसे दूर भागता रहे, लेकिन तुम उससे जुड़ते रहो, यकीन मानो तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। बस आखिरी नसीहत है पैगंबर इस्लाम की, वो अवसानी अन अक्सर मिन कौल, पैगंबर इस्लाम ने सिफारिश की है मुझसे कि मैं इस जुमले को बार बार दोहराता रहूँ। वह जुमला क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मुझसे कहा पैगंबर इस्लाम ने, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई पावर नहीं, एक्सेप्ट फ्रॉम अल्लाह तबारक व तआला। रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए ताकत चाहिए, हक बोलने के लिए एनर्जी और पावर चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए है तो हमें कहाँ से लेना है वो ताकत, वो सोर्स ऑफ पावर कहाँ है, वो कहाँ से मिलेगी मुझे एनर्जी, वो कहाँ से मिलेगी कुव्वत? फ्रॉम अल्लाह तबारक व तआला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूर दूर की बात क्या करें, हम नमाज में जो उठते बैठते हैं, अगर उसकी ताकत हमारी ज़िंदगी में ना हो, ना उठ सकते हैं और ना बैठ सकते हैं, इसलिए सजदे से खड़े हो रहे तो होते हैं, तो क्या कहते हैं, बिहौलिल्लाही व कुव्वतिही अकूमु व अक़ूद। बाज़ मराजे नब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अकूमु व अक़ूद व अरकऊ व असजुद, परवरदिगार तेरी दी हुई कुव्वत से मैं उठता भी हूँ, मैं बैठता भी हूँ, मैं रुकू भी करता हूँ, मैं सजदा करता हूँ। अगर वो कुव्वत ना दे, वो ताकत ना दे, मेरी ज़िंदगी में ना कोई कुव्वत होगी, ना कोई ताकत होगी। सोर्स ऑफ पावर इज़ अल्लाह तबारक व तआला। अन अक्सर मिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, क्यों क्यों ये कहता रहूँ? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, फ़इन्नहा कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, ये जुमला सिर्फ जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना, वन ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द पैराडाइज ऑफ द हेवन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला इंसान को ये जुमला सब्र भी देता है, शुक्र का सलीका भी सिखाता है, कुव्वत भी देता है और ताकत भी देता है। रिवायत में है, जब जंग के मैदान में करबला के दश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असर आशूर लड़ते लड़ते खैमों के दरमियान आते थे, खैमों के दरमियान जहाँ बीवियों के खैमे थे, खैमों के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े होते थे और बुलंद आवाज़ में कहते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। हुसैन जो तीन दिन की भूख और प्यास में जो जंग कर रहा है, हुसैन अपनी ताकत से नहीं लड़ रहा है, उसकी दी हुई ताकत से लड़ रहा है। कभी बीवियाँ मायूस ना हो जाएं, औरतें मायूस ना हो जाएं, इमाम ने याद दिलाया, अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखो, नजात का रास्ता दिखाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। पर कह देते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला بالله ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة। एक सहाबी थे पैगंबर इस्लाम के जिनका नाम था अबू दर्दा, इज़ नाउन फॉर वर्शिप्स, नमाज रोज़ा, दिन में रोज़ा रखते थे और रात भर नमाज पढ़ते थे, और आपको पैगंबर इस्लाम ने हज़रत सलमान का भाई बनाया था। जब मदीना पहुँचे थे पैगंबर इस्लाम, सबसे पहला काम बिफ़ोर कंस्ट्रक्टिंग द मॉस्क, पैगंबर इस्लाम ने कहा ब्रदरहुड को कायम करो, महाजिर अंसार का भाई, अंसार अंसारी का भाई, महाजिर महाजिर का भाई, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई करार दिया, ब्रदरहुड को कायम किया, विथआउट ब्रदरहुड बड़ी मस्जिद भी बना लेंगे तो फ़ायदा क्या है जी, मस्जिद बना लेंगे तो भी कोई फ़ायदा, ब्रदरहुड को कायम किया। तो अबू दर्दा को सलमान ने फारसी का भाई करार दिया, सबको भाई बना दिया, तो मौलाए कायनात खड़े रहे। तो

भलाई करना। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आपने तमाम असहाब को एक दूसरे को उनका भाई बना दिया और अली को किसी का भाई नहीं बनाया। तो पैगंबर इस्लाम करीब गए, मौलाए कायनात को सीने से लगाया, आए अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई।

भाई भाई चारगी कायम की, ब्रदरहुड को कायम किया, और अबू दरदा भाई रहे, सलमान फारसी ख्याल कर दिया। भाई का मतलब है सिर्फ लिखना नहीं है, भाई का मतलब है सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, उनका ख्याल करना, उनकी ज़िंदगी का ख्याल करना, डे टू डे लाइफ में उनकी ज़िंदगी का ख्याल करना जिम्मेदारी बन जाती है, राइट्स होते हैं एक भाई के दूसरे भाई के गर्दन पर। अबू दरदा का आप ख्याल करते, अबू दरदा सलमान का ख्याल करते। ज़ाहिरन अबू दरदा की फैमिली ने सलमान फारसी से कहा, सलमान ज़रा देखो तो अबू दरदा को हुआ क्या है, घर की तरफ तवज्जो नहीं है, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं है, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं है, बड़ा दीनदार बन गया है। बड़ा दीनदार क्या करता है, का दिन में रोज़ा रखता है, रिकमेंडेड रोज़े, रात में नमाज पढ़ता है, रिकमेंडेड नमाज, नमाज के बाद नमाज, रोज़े के बाद रोज़ा, नमाज के बाद नमाज, रोज़े के बाद रोज़ा, ना घर का ख्याल ना बच्चों का ख्याल। सलमान फारसी ने कहा ये बात है, चलो हम उसे नसीहत कर देते हैं। सलमान फारसी ने अपने घर बुलाया, दिन में दस्तरखान लगाया, तो अबू दरदा ने कहा मैं रोज़े से हूँ। सलमान ने कहा मैं कह रहा हूँ रोज़ा तोड़ दो, तुम इन्वाइटेड हो मेरे घर में, मेहमान हो, जब मेहमान बुलाए मुस्तहब रोज़े में, कोई किसी को मेहमान बुलाए आदमी रोज़ा तोड़ सकता है, रोज़ा खोल सकता है। हत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं आपकी बीवी आपके लिए दस्तरखान लगा दे, बेहतरीन खाने दस्तरखान पर रखे, आप रिकमेंडेड रोज़े से हैं तो रोज़ा खोल दो, इसलिए कि ये कभी कभार मौका मिलता है, कभी कभार मौका मिलता है कि बीवी दस्तरखान किसी के लिए लगा दे और इन्वाइट करे, आओ बिस्मिल्लाह नाश्ता करो, तो रोज़ा खोल दो, इसलिए कि बीवी ने आपको इन्वाइट किया, रोज़ा खोल सकता है बंदा। तो अबू दरदा से कहा इन्वाइटेड हो, रोज़ा खोलो। रोज़ा खोल दिया आपने, तो ईशा का वक्त आया, ईशा के बाद कहा मेरे घर में रुक जाओ, कहा नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे अबू दरदा की, ईशा की नमाज़ पढ़ लिए, सो जाओ मेरे साथ। कहा नहीं मुझे नमाज़ पढ़ने की, मैं कह रहा हूँ सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ फिर बाद में उठते हैं, यहाँ कल गई नींद आए, नमाज फज्र से पहले उठे। सलमान फारसी ने कहा नमाज शब पढ़ो, नमाज फज्र फिर घर चलते हैं। नमाज शब पढ़ी और नमाज फज्र के बाद सलमान फारसी ले गए अबू दरदा के घर, और जाने के बाद कहा अबू दरदा तुम्हारी फैमिली की भी तुम्हारे गर्दन पर जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खूबसूरत जुमला जो सलमान फ़ारसी ने कहा, वो जुमला मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। सलमान फ़ारसी ने कहा ए अबू दरदा यकीनन तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है, नमाज़ पढ़ना रोज़ा कर रखना ये राइट है हमारी गर्दन पर, अल्लाह तबारक वी कॉन्ट स्किप इट, वी हैव टू परफॉर्म द फास्टिंग, एंड रोज़ा भी रखना पड़ेगा, फास्ट भी रखना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अपने नफ्स सेहत और जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हें जिस्म का भी ख्याल करना पड़ता है, जिस्म को मार नहीं सकते, जिस्म को तकलीफ़ नहीं दे सकते, हेल्थ का ख्याल रखो, तुम्हारा अपनी बॉडी का ख्याल करो। उसके बाद का जुमला तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारी गर्दन पर हक है, बीवी का हक है कि नहीं है, हक है, बस हर हक को हकदार को उसका हक अदा करना ही ईमान है। जिसम का हक अदा करो, अल्लाह का हक अदा करो, बीवी का हक अदा करो, बच्चे का हक अदा, बच्चों का हक अदा करो, सब हक अदा करोगे तो मोमिन कहलाओगे। कहीं का किसी का हक मार रहे हो इसका मतलब है अभी तुम्हारा ईमान कंप्लीट नहीं हुआ। बेहतरीन मैसेज जो हज़रत सलमान ने दिया ये, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में रखो, मॉडरेशन बेहतरीन मैसेज है इस्लाम का सारी दुनिया वालों के लिए। ऐसा ना हो कि इंसान का बैलेंस बिगड़ जाए। सुबह एक्सरसाइज में हमारे इंस्ट्रक्टर ने कहा हाथ में स्टिक थामो और अपने लेग्स को क्रॉस रखकर चलो, हाथ में स्टिक हो लेग्स को क्रॉस रखकर चलो। हमने पूछा इससे फ़ायदा क्या है, क्या तुम बैलेंस रखना सीख लोगे, गिरते वक्त अगर तुम्हारे अंदर बैलेंस हो तो तुम अपने आप को बचा पाओगे। बैलेंस नहीं है तो आदमी गिर जाता है, जिस्म में बैलेंस नहीं ज़मीन पर गिरेगा, ईमान में बैलेंस नहीं है तो बड़ी बुलंदी से इंसान गिरेगा। जब गिरेगा तो फिर ईमान नहीं रहेगा, ईमान के बैलेंस, ईमान का बैलेंस टूटता है तो बंदा निफाक में गिर जाता है, जिसे आज की दुनिया में हिपोक्रेसी कहते हैं। आज मुसलमान लीडर्स में जिस चीज़ की कमी है वह बैलेंस की कमी है। यूएई ने अनाउंस किया है हर स्कूल में नमाज जमात होगी जहर की, हर स्कूल में नमाज जमात होगी जहर की, और तुम्हें नमाज याद आ गई? वो बच्चे याद नहीं आए जिनके पास नमाज से पहले खाने को कुछ नहीं है। उन बच्चों के ख़िलाफ़ तुमने मीटिंग्स रखी, उन बच्चों के ख़िलाफ़ तुमने साजिश की है, वो बच्चे याद नहीं आए? अपने बच्चे याद आए कि नमाज होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें वो बच्चे याद नहीं है जो गाज़ा के और फ़िलिस्तीन के बच्चे, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं, वहाँ पर तुम्हारी ज़बान से कोई फतवा नहीं निकलेगा,

हमारी जबान से कोई स्टेटमेंट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकले, साजिश देखिएगा, हिपोक्रेसी देखिएगा, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हम कह सकते हैं कि गज़ा के बच्चे पुकारते रहे हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, कोई मुस्लिम मुल्क कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वही यमन के खिलाफ जब लड़ने की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बैठकर एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, अगर हमले अगर ना रुके तो हम हूतीस पर हमला करेंगे, अंसारुल्लाह पर हमला करेंगे, यमन पर हमला करेंगे। अचानक कैसे ये याद आ गई? इतना जल्दी इंसान अपने ज़मीर को बेच देता है। उन बच्चों की याद नहीं आई जो भूखे मर रहे थे, वो याद आ गए जिन्होंने तुम्हें इन्वाइट किया और गरम गरम तुम्हें वो चीज़ें खिला दी जिसकी वजह से तुम्हारा ईमान ज़ायल हो गया। जहाँ बोलना चाहिए था तुमने बोला नहीं, वहाँ लड़ना शुरू कर दिया जी। जहाँ बातचीत हो सकती थी वहाँ तुमने बातचीत नहीं की, लड़ना शुरू कर दिया। जहाँ लड़ना ज़रूरी था उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग रखना शुरू कर दिया था। ये कौन सा ईमान है? ये कौन सा इस्लाम है? क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? मुझे ये आयत ज़रूर याद आई आज सुबह जब मैं ये देख रहा था तो कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है वَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا। मुनाफिकीन क्या करते हैं जब मोमिनीन से मिलते हैं, राउंड टेबल पर बैठते हैं, मस्जिद के सफ़ों में खड़े होते, वी आर विथ यू, वी आर ऑल्सो बिलीवर्स, वी आर स्टैंडिंग विथ यू। وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं, बड़े बड़े छोटे बड़े शैतान और छोटे शैतान, जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते कालू इन्ना माकोम वी आर विथ यू। मोमिनीन से सब में खड़े होते वी आर विथ यू, और वहाँ जाने के बाद कहते वी आर विथ यू। तो फिर तो वहाँ का क्या कर रहे थे? वो पूछेंगे शैतान, शैतान थोड़ी राजी हो जाते हैं तुम्हारे कहने से। शैतानी तो वहाँ क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे वो? इन्नमा नहनो मुस्तहज़िऊन, सिर्फ उनका हम मजाक उड़ा रहे थे। आज हकीकत में ये बड़े बड़े मुल्क न्यूक्लियर पावर कंट्रीज मुसलमान बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, वाकई मजाक उड़ा रहे हैं। घबराएंगे नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि वो बच्चे अगर तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, वो मज़लूम अगर तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उनका एक दिन ज़रूर मजाक उड़ाएगा। जो आज साथ नहीं देते कल उनका कोई नहीं होगा, जब वो पुकारेंगे हमारा कौन है। ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी आज की दुनिया में हम देखते हैं, इसके लिए हमें दुआ करना चाहिए मुसलमानों के लिए। वो मुसलमान जो मजलूम हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो आजकल हर दिन उन पर हमले हो रहे हैं, उन मुसलमानों को याद करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। गज़ा के बच्चों को याद करना ज़िम्मेदारी। सीज़ फायर के बाद 3 साल हो गए, जेनोसाइड के 3 साल गुजर रहे हैं, हर दिन अटैक होते हैं, हर दिन अटैक। सीज़ फायर के बाद रिपोर्ट आई है, सीज़ फायर के बाद हर 90 मिनट्स में एक फिलिस्तीनी या मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है। सीज़ फायर के बाद, अग्रीमेंट्स के बाद साइन तमाम हो जाने के बाद हर 90 मिनट्स में एक बच्चा, एक बड़ा या शहीद हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता है। फिर भी मुसलमान खामोश हो और बोले नहीं, आवाज़ ना उठाए, ऐसी मुसलमानी पर क्या कह सकते हैं? ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, नाम इस्लाम का है, काम मुनाफिकीन और काम निफाक का। अल्लाह तबारक व तआला सारे मज़लूमीन की नुसरत फरमाए, ज़ालिमीन को जल्द अज जल्द नेस्त व नाबूद फरमाए। اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيداي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام.

0: सलाम उसकी मुबारकबाद हम पेश करते हैं और फिर इसके बाद से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब, पहला सवाल मैं आपकी खिदमत में जो बहुत ही हसास है वो ये है कि ये जो सास बहू नंद का जो कन्फ्लिक्ट है और हर घर तकरीबन हमारे माशरे का इसमें इब्तला है, तो आखिर इसकी जड़ क्या है? क्यों ये बहू और सास का झगड़ा होता है, बहू और नंद के दरमियान जो है वो ये झगड़े होते हैं, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं?
1: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मैं भी तमाम नाज़रीन को और उम्मत मुस्लिमा को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ इन दो विलादतों के हवाले से। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो एक कुल्लिया हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे सास बहू खुशी के साथ रहते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अक्सर घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसकी असल वजह क्या है, रूट कॉज क्या है, तो बहुत सारे स्टडीज़ के बाद जो चीज़ सामने आई है उसमें चंद चीज़ें कॉमन हैं और चंद चीज़ें जो है ना वो केस पर डिपेंड करता है, यानी उस फैमिली के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो जो चीज़ें कॉमन हैं, देखने में जो चीज़ें ज़्यादा आई हैं, उनमें एक मसला जो है ना वो कंट्रोल का इशू है कि कंट्रोल किसके पास रहेगा, कौन रूल करेगा, किन के प्रिंसिपल्स चलेंगे घर में। एक मसला तो कंट्रोल का है और दूसरा मसला जो है ना वो बढ़तरी का है कि कौन बढ़तर है, कौन अफजल है, किसकी बात मानी जाएगी। तो एक तो की दो ये इश्यूज हो गए। फिर इशू आता है अखलाकी हवाले से जो हम देखते हैं, वो एक अना का मसला आ जाता है क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई भी होती तो हम अना का मसला बना लेते हैं, या हसद हो जाता है, एक दूसरे से हसद करने लगते हैं। तो नतीजा फिर यही निकलता है कि इंसान जो है ना वो फिर लड़ाई झगड़े की तरफ जाता है। और आखिरी चीज़ जो बहुत कॉमन होती है वो तवक्कुआत होती है। जब बेजा तवक्कुआत होती हैं एक दूसरे से तो ऑटोमेटिकली झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, फसाद होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अगर हम चीज़ों को बिल्कुल इन पाँच बातों को अगर समेट लें तो अगर हम अपनी किरदार साजी कर लेंगे, अपनी तरबियत किए हुए होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, तो ये मसाइल या तो नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत मामूली हद तक होंगे और सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी खुद साजी नहीं की होगी, किरदार साजी नहीं की होगी, तरबियत नहीं हुई होगी हमारी, तो फिर यही चीज़ें जो है ना जो हमारी अखलाकी बीमारियां हैं, बुराई हैं, वही सबब बनेंगी इस झगड़ों का जो आपस में ख्वातीन के दरमियान होती हैं अक्सर। जी
0: यार मौलाना साहब, अभी आपने आखिर में जो एक बात कही तवक्कुआत वाली, यानी एक यानी जैसे कि तवक्को होती है, इंतज़ार होता है कि ये तवक्कुआत एक तरफा या दो तरफा, आसान आमतौर से देखने को मिलता है कि कहा जाता है मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत मेरा ख्याल हमारा ख्याल रखती है, घर का ख्याल रखती है। तो ये तवक्कुआत जो आप कह रहे हैं एक मसला जो होता है जो रूट बनता, रूट कॉज बनती है झगड़े की तवक्कुआत, वो किस तरफ से होती है, एक तरफ से या दोनों तरफ से?
1: हर केस का अपना अपना है। कहीं पर आपको ये मिलेगा कि बहू की तवक्कुआत ज़्यादा है, कहीं पर आपको मिलेगा सास की तवक्कुआत ज़्यादा है, कहीं पर आपको मिलेगा दोनों की एक दूसरे से गलत तवक्कुआत है। तो हर एक केस का ना अलग अलग है। तो हम शादी से पहले तो सब लड़कियां अच्छी लग रही होती हैं, माएँ शादी करके इसलिए लाती हैं क्योंकि उनको लड़की पसंद होती है, वो ढूंढ कर चुन कर लाती हैं। उसके बाद जब ज़िंदगी शुरू होती है उसके बाद फिर टेंशन शुरू हो जाती है, फिर वही बहू जो है बुरी लगने लगती है, उसी के फिर बुराइयाँ निकालनी शुरू हो जाती हैं। तो ये आप देखेंगे तो दोनों फैक्टर्स में शामिल है, यानी इसमें बहू जो है उसकी भी तवक्कुआत सही नहीं होती, उस फैमिली से रियलिस्टिक नहीं होती, या सास की नहीं होती, या दोनों की एक दूसरे से नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम बन जाती है। या अगर सास और बहू में कोई इतना ज़्यादा ना भी हो टेंशन, तो एनवायरनमेंट जो होता है ना, घर का एनवायरनमेंट, सोसाइटी का एनवायरनमेंट, वो टेंशन पैदा कर देता है। यानी ऐसा माहौल भी हमने देखा है और आप भी देख रहे हैं, हम सब जानते हैं कि अगर सास बहू की थोड़ी बहुत अच्छी चल भी रही है तो लोग उसको जो है ना वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छी बड़ी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। तो जो तवक्कुआत हैं, अगर जितनी भी तवक्कुआत आपकी रियलिस्टिक होंगी उतने ही कम झगड़े होंगे, उतने ही आप प्रिपेयर्ड होंगे, आप तैयार होंगे। लेकिन अगर आपकी तवक्कुआत ही गलत होंगी, अनरियलिस्टिक होंगी, या आप एक खाम ख्याल की ज़िंदगी में होंगे तो ये प्रॉब्लम तो होंगी। आज के सोसाइटी में सासों को जो अपनी बहुओं से प्रॉब्लम हो रही है वो इस जनरेशन को समझ ही नहीं पा रही कि नई जनरेशन की जो अब बच्चियां शादी होके आ रही हैं, उनका उनका

0: किस टाइप का है, उनके आदात, उनके जो अदब है, उनका जो हैबिट्स है वो किस तरह के हैं, वो उनका लाइफ स्टाइल कितना। अब वो सास अपने तरीके से उसको देख रही होती है कि मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है, मैंने 20 साल 30 साल इस तरह जिंदगी गुजारी है, तो अब बहू को भी वैसे ही उसी से स्टार्ट लेना है, तो ऑटोमेटिकली वो बनेगी नहीं। आज की जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट है पहली जनरेशन से, और उसका ब्रॉटअप, उसके वैल्यूज, उसका सिस्टम अलग है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, तो ये इन चीज़ों में बहुत तब्दीली आ चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बहुएं या सारी सासें, हमने बहुत अच्छी फैमिलीज भी देखी हैं और हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल देखने में आ रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो जनरली चीज़ें आ रही देखने में। तो यहाँ पे दोनों को अपनी एक्सपेक्टेशंस चेक करनी पड़ेंगी, तो और दोनों को सही करनी पड़ेंगी, तो इससे मामला सही हो जाएगा। इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, जो ठीक नहीं हो सकती हो। इंटेंशन होना चाहिए करने का, ठीक करने का इरादा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, और इंसान को जिसे कहते हैं कि लगा रहना चाहिए उस काम के लिए, तो हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब इंसान है ना, कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं है, हम दुनिया में आए परफेक्शन के लिए, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो अगर इस्लाम को हम अपना दीन समझते हैं और उसके मुताबिक हम अमल करते हैं, तो हमें तो पता है कि हमारे अम्बियाओं ने हमें क्या सिखाया है, हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया है, मिन अखलाकिल अम्बिया हुस्नुल माशरा। तो जब हमारा जो है हुस्न अखलाक हमारा सही नहीं होगा, तो फिर हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। या कुरान की जो सूरह निसा की आयत है, वो आशिरहुन्ना बिल मारूफ, तो हमें अच्छे सलूक के साथ जिंदगी करेंगे तो जिंदगी वो अच्छी हो जाएगी, जब सलूक ही अच्छा नहीं होगा तो जिंदगी कैसे अच्छी होगी, नहीं होगी। वो सलूक इसलिए नहीं अच्छा होता क्योंकि हमारी आदतें अच्छी नहीं होती, हमारे इंटेंशन जहाँ गलत होती हैं, तो ऑटोमेटिकली में प्रॉब्लम होती है। जी
1: यहाँ पर एक बात, अभी आपने दीन की और अम्बिया अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे छेड़ी आपने, क्या कहते हैं, उसने माशरत का भी तذکرہ किया कि सोसाइटी में अच्छे अखलाक के साथ हम और बेहतरीन बिहेवियर के साथ जो है वो हम ज़िंदगी गुजारें। एक सवाल यहाँ पर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम करना चाहते हैं, आखिर दीन में, इस्लाम में, यानी दो सवाल यहाँ पर एक्चुअली, एक तो दीन इस्लाम, ये सास बहू ननंद, क्या ऐसा कुछ सिस्टम है दीन में, इस्लाम में कुछ रखा है इस्लाम ने, हुकूक वगैरह। और दूसरी बात यहाँ पर जो है वो, जब ये सवाल इसका जवाब जो है क्लियर होगा, तो मैं दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपसे करूँगा। एक बहू जो दूसरे घर से आ रही है, एक दूसरे ख़ानदान में, एक दूसरे एनवायरनमेंट से आ रही है, एक नए एनवायरनमेंट, तो उससे मुताल्लिक मेरा एक सवाल होगा। तो पहले ये वाला, ये इस्लामिक, इसका क्या मतलब जो है वो, यानी इस्लामी तनाजुर में
0: जी
1: अगर देखा जाए तो क्या कोई ऐसा हुक्म है सास, खास सास से मुतालिक, खास बहू से मुतालिक, खास जो है वो ननंद से मुतालिक, क्योंकि हर एक की एक प्राइवेसी होती है, और जिसको दीन में हरीम कहा जाता है, तो और बहुत ज़्यादा जो है बहुएं खास तौर से वो प्राइवेसी प्राइवेसी करती हैं, इसको ज़रा सा आप क्लियर कर दें प्लीज़।
0: जी देखें, दीन जो है ना, वो एक इंडिविजुअल के लिए भी है और एक सोसाइटी के लिए भी है, तो किसी एक जगह महदूद नहीं है दीन, क्योंकि दीन कामिल है, परफेक्ट दीन है, तो वो आपको इंडिविजुअल राइट्स भी बताता है, सोशल राइट्स भी बताता है। तो अगर आप एक फैमिली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हर एक के अपने हुकूक हैं, बस हमें उन हुकूक की रियायत करनी है। तो अगर हम उन हुकूक की रियायत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो अगर बेउनवान शौहर, एक शख्स जो है, एक शौहर है और उसकी बीवी है, तो उन दोनों के अपने हुकूक हैं, वो अगर हुकूक की रियायत की जाएगी तो ये सही हो जाएगी। इसी तरह शौहर की जो वालदा है, उसके अपने हुकूक हैं, वो उसको अदा करने हैं, जो बहू है उसको अपने हुकूक अदा करने हैं। तो ये जब हम हुकूक को जानेंगे और अखलाक को जानेंगे, तो हम जिंदगी गुजार पाएंगे, क्योंकि हुकूक जो है वो इंसान को सिक्योरिटी देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उसको उसको सेफ करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। इसीलिए दीन ने हुक्म दिया ना, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, वो इसीलिए कि हम अदल करें, एहसान करें। अदल आप जब भी करेंगे जब आप हुकूक की रियायत करेंगे। तो हर एक के हुकूक हैं, डिफाइंड है दीन में, और उसके हदूद भी मुशख्खस हैं कि किस हद तक वो कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और अखलाक आके उसको कितने आगे तक ले जाता है। तो अगर इंसान दीनी तालीम हासिल करेगा और उन उसूलों के साथ और उन हदूद को रियायत करेगा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो शौहर हो, बीवी हो, सास हो, नंद हो, कोई भी हो, जो अखलाकी उसूल हैं, क्योंकि इंसान है ना हम लोग, और इंसान अखलाक की बुनियाद पर जीता है। हुकूक तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आते हैं, बैलेंस करने के लिए आते हैं, सोसाइटी की फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए आते हैं। हुकूक इसलिए होते हैं कि

0: को नुकसान ना पहुंचे, सब अपने अपने एरिया में रहें, सब अपने अपने जोन में रहें और एक दूसरे के जोन पे जो है ना क्रॉस नहीं करें, एक दूसरे के बाउंड्रीज को क्रॉस ना करें, ताकि स्मूथली सिस्टम चलता रहे। फिर अखलाक आकर उसको बेहतरीन बना देता है आपकी ज़िंदगी को, और उसमें चाशनी ले आता है, उसमें गर्मी ले आता है, प्यार मोहब्बत और ये सब कुछ ले आता है। तो अगर इंसान जानेगा और उस पर अमल करेगा तो ये प्रॉब्लम तो होगी नहीं ना। अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया सिस्टम वो इसीलिए किया, और अल्लाह ताला ने घर बनाया इसीलिए कि इंसान बाकमाल बने और एक दूसरे के साथ रहे, खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारे, उनकी एक दूसरे के लिए काउंसलिंग हो, वो एक दूसरे के मददगार हो। अब ये जो कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुल्लकुम वअंतुम लिबासुल्लहुन्ना, तो ये औरत को तो अल्लाह ताला ने एक लिबास के उनवान से देखा है ना। तो ये अगर औरत एक लिबास के उनवान से आ रही है तो वो तो प्रोटेक्ट करती है, वो तो इंसान के को उसकी शर्म को छुपाती है, शर्मगाह को छुपाती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको इज्जत देती है, उसको बावकार बनाती है। तो औरतों का काम तो ये होता है एक दूसरे को कवर करना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, ना कि एक दूसरे लड़ना, एक दूसरे झगड़ा करना। तो ये दीन के ये फंडामेंटल्स हैं। तो हर एक के अपने अपने हकूक हैं, उसकी अपनी रियायत है, वो करना है। अगर कोई प्राइवेसी चाहता है तो उसका हक है, अगर कोई लड़की प्राइवेसी चाहती है तो उसका हक है। तो वो जब भी इसको अपना हक पता होगा तो वो प्राइवेसी को जान पाएगी, अगर सास को भी अपना हक पता होगा, अपने लिमिट्स पता होंगे तो वो अपने लिमिट में रहेंगी, बहू अपने लिमिट में रहेगी, दोनों खुश रहेंगे। लेकिन अगर दोनों अपने लिमिट्स में ही रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी।
1: आपकी बातों से ये जो नतीजा मैं निकाल सकता हूँ कि दरअसल एक रूट कॉज जो है वो उसकी झगड़ों की, वो एक ये हो सकती है कि लोग अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और जो प्राइवेसी है यानी जो हरीम है, वो जो अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं, अपने जो हदूद हैं, उनको जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मियां बीवी के एक अपने जो है वो हकूक़ हैं, राइट्स हैं एक दूसरे के लिए, भाई का बहन की नस्बत और भाई और एक बेटे का माँ की नस्बत, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक सवाल, जब एक लड़की शादी करके आती है तो कहा जाता है कि सास ससुर की खिदमत करे और घर वालों की जिम्मेदारी उठाए, पूरा घर जो है वो उठाए। हमको देखने को मिलता है हमारे माशरे में कि वो एक लड़की जो आई है, नई बहू अभी आई है, वो पूरे घर के लिए खाना भी बना रही है, सफाई का भी इंतज़ाम कर रही है और साथ साथ सोसाइटी में भी घर और ख़ानदान को मेनटेन किए हुए। अगर खुसूसन अगर कोई बड़ी बहू है तो उसको बार बार ही कहा जाता है कि तुम तो बड़ी बहू हो, तो बड़ी हो, तुम्हें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। भाई सास अपने ज़माने की बातें बताती है कि हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। तो ये सारा उसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है वो ये होती है कि खिदमत, कि ये खिदमत जो है, जो पढ़ी लिखी ख्वातीन होती हैं, कहती है देखो हमारे पर सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि शरण हमारे ऊपर कोई ऐसा वजूब और फ़र्ज़ हमारे पर नहीं है, इसको कैसे हल करेंगे? और ये कहाँ से ये चीज़ आई है, सास ससुर की खिदमत करना, घर की जिम्मेदारी, पूरे घर की जिम्मेदारी, जॉइंट फैमिली में पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, अगर हम इस पर ज़रा सा रोशनी डाल दें और इसको कैसे हल करेंगे हम?
0: अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको एक एक करके हल करें।
1: इसको और कम करता हूँ, दो चीजें
0: जी जी जी।
1: तो सास ससुर की खिदमत वाला पॉइंट है और दूसरा जो है वो ये कि लड़की के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है घर की, ठीक है, तवक्कुआत वाली बात जो थी उसी के साथ साथ, तो इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे हल करने की कोशिश करेंगे खिदमत को, क्योंकि खिदमत फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है,
0: सही है,
1: ठीक है, इसको कैसे हम हल करेंगे?
0: देखिए, खिदमत का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो पहली बात ये कि हम अकेले तो रह नहीं रहे सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के अदियान मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह के माइंडसेट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ तरह की आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, लोग अलग अलग अकीदों के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ और प्रैक्टिसेस के साथ रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, तो उनके अपने वैल्यूज़, उनके अपना इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर पर भी हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, तो इंटरनेशनली आप चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, ट्रेंड्स सेट हो जाते हैं, नॉर्म्स बन जाते हैं, कल्चर बन जाता है, वैल्यूज़ बन जाते हैं नए नए, और वो हमारे रिलीजन के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और फिर हम उसको आइडियल बनाकर उसको फॉलो करने लगते हैं। यानी हम अपने नए गोल्स बनाते हैं, नए आइडियल्स बनाते हैं और अपने जिनको हम रोल मॉडल बनाते हैं उनको उनकी तरह की ज़िंदगी गुजारना चाह रहे होते हैं। तो और हमारे कल्चर में जो चीज़ें पहले से इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं उनमें ये है कि भाई लड़की आएगी खिदमत करेगी, ये एक माइंड सेट है, वो आके एडजस्ट करेगी इस घर में, उसको एडजस्ट करना होगा। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उसी को क्यों करना है, एडजस्ट करना होगा, ये तो सबको एडजस्ट करना होगा ना। बात हो रही है अदल इंसाफ की, दीना में आके कहते हैं आप अदल इंसाफ करें, आप बराबरी की बात करें, तो ये तो कहीं भी दीन ने नहीं कहा कि जो औरत घर में आएगी

0: वही एडजस्ट करेगी, नहीं घर के हर फर्द को एडजस्ट करना है, क्योंकि वो किसी की इज्जत है, किसी के लिए वो बायस इफ्तिखार है, उसकी अपनी शख्सियत है, एक अहमियत है। तो जिस घर में भी वो लड़की आएगी उसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उसको अहमियत मिलनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, और सबको एडजस्ट करना है, क्योंकि ये घर तो सबका है, सब शेयर कर रहे हैं, सब मिलके काम करेंगे। और अगर उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि वो कुर्बानी दे, तो उससे बड़े कुर्बानी देने वाले लोग घर में और मौजूद होने चाहिए, ताकि जो जो सास है, ससुर है, घर में बड़े लोग हैं, वो रोल मॉडल बनेंगे ना कुर्बानी के। तो ये जो लड़की शादी होके आई है, ये उनको अपना रोल मॉडल बनाएगी कि हाँ भैया सब लोग कुर्बानी देते हैं, मैं भी दूंगी, सब लोग इशार करते हैं, मैं भी करूंगी, इस तरह होता है। ये तो हमारे गलत माइंडसेट है पहले से, जो दूसरे कल्चर से आ गया कि बस बहू आई है तो वो काम करने के लिए आई है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। काम करने के लिए तो मासियां लेकर आई जाती हैं, नौकरानियां रखी जाती हैं काम करने के लिए। अगर वो कर दिए खुद से तो इट्स वेल एंड गुड, फबेहा, खुशी से कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो काम इंसान खुद खुश खुद से और खुशी से करता है वो इस्लाम कबूल करता है, उसको इस्लाम पसंद करता है, ना कि जो प्रेशर डाल के और जोर जबरदस्ती करके। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम कहता है आप घर का माहौल इतना मोहब्बत, इतना रिस्पेक्ट वाला बनाए कि वो लड़की खुद से कहे कि मुझे घर का काम मैं खुद करूंगी, क्योंकि वो खुश हो। जब इंसान खुश होता है तो वो और काम करता है। आप घर का माहौल अच्छा बनाए, वो खुद ब खुद खुशी से करेगी। वो चाहेगी मैं खाना बनाऊं, मेरे मियाँ भी खुश हो, मेरी सास भी खुश हो, मेरे सब लोग घर के खुश हों, वो खुशी खुशी करेगी। यानी औरत को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है वो एक शहजादी का मकाम दिया है, यानी उसकी इज्जत, उसकी अहमियत एक शहजादी की तरह है। तो जो वो काम खुशी से करेगी वही उसमें ही बरकत होगी, उसमें ही खैर होगा, उसमें ही सब कुछ होगा। क्योंकि इमाम अली ने इस तरह समझाया ना कि मर्द को, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम बादशाह कहलाओ तो तुम अपनी बीवी को एक रानी की तरह ट्रीट करो, लेकिन अगर तुम अपने आप को गुलाम कहलवाना चाहते हो तो फिर तुम एक नौकरानी की तरह ट्रीट करोगे उसको। तो ये डिपेंड करता है मेंस की, मर्द की साइकोलॉजी के ऊपर कि वो औरत को किस तरह ट्रीट करता है। अगर वो औरत को मासी की तरह ट्रीट करेगा तो वो खुद उसका मियाँ होगा जैसे मासी का मियाँ होता है। अगर वो खुद शहजादा है तो वो शहजादी की तरह रखेगा बीवी को। ये माइंडसेट इस्लाम का है, इज्जत है ना इस्लाम की। इस्लाम ने इंसान को इज्जत अता की है, इन्ना अकरकुम इंदल्लाह अतकाकुम। तो मेयार जो है वो तकवा है, उसकी बुनियाद पर इंसान की इज्जत है और उसका एहतराम है। हमारे यहाँ तो माशरे में इज्जत और एहतराम का कोई तसव्वुर ही नहीं रखा जाता, और ये माइंडसेट ही गलत होता है कि हम अगर कोई शादी करके ला रहे हैं तो उससे सारा काम करवाएंगे। ये है तो कॉन्सेप्ट इस्लामिक है नहीं। इस्लाम तो कहता है आपको इज्जत दें, एहतराम दें, उसको अच्छे से रखें, ताकि वो खुशी से जो काम करती है वो करे, और वो अगर नहीं कर सकती तो वो नहीं करेगी। ये तो शौहर की
1: एडजस्टमेंट वाली
0: जिम्मेदारी है।
1: बात जो आपने यहाँ पर कही है, तो ये
0: जी जी
1: वाकई अगर देखा जाए कि खातून के ऊपर एक तरह का शायद ये जुल्म शुमार हो, कि ससुराल वाले भी कहते हैं कि तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब कोई मसाइल पेश आते हैं तो जो लड़की के मायके वाले होते हैं, खुसूसन माँ जो है, वो कहती है बेटा एडजस्ट करो, वहाँ पे रहने की कोशिश करो। जबकि आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि एडजस्ट जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो दो तरफा होगा। एक मतलब आपके घर का माहौल है जिसे इस लड़की को समझना है, दूसरे आपको अपना अपना सलूक, अपने ताल्लुकात, अपना बिहेवियर उस लड़की के मुताबिक भी रखना है कि जिस घर से वो होके आई है। उस अंदर हो सकता है कि एक लड़की जो इकलौती है, अकेली है अपने घर की, नाजो नखरे में पली हुई है, और वो एक बड़ी फैमिली में आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये दो तरफा मामला होगा। जब तक ये दो तरफा मामला नहीं होगा तब तक ये क्या कहते हैं रिश्ता खुशी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। एक बात और जो आपकी बात से हम कंक्लूजन मतलब ले सकते हैं वो खुशी वाली बात का, वो ये कि ठीक है बाज लड़कियां कहती हैं कि हमारे ऊपर वाजिब नहीं है अपने सास ससुर की खिदमत करना, फर्ज नहीं है हमारे ऊपर दीन में, हमारे ऊपर खाना बनाना वाजिब नहीं है, हमारे ऊपर जो है वो सफाई करना वाजिब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मेरी जो है वो तायीद करेंगे कि दरहकत ये चीज़ जो है सास ससुर की खिदमत, घर वालों की खिदमत, घर में खाना बनाना, ये चीज़ शायद मियाँ और बीवी के रिश्ते के ऊपर डिपेंड करती है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, इनके दरमियान के जो है वो आपसी रिश्ता इनका जो है वो कैसा है। अगर इनके दरमियान मोहब्बत है तो अखलाकर इनसे मुताल्लिक हर चीज़ से मोहब्बत होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक शौहर को, एक मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत है तो उससे मुताल्लिक हर चीज़ से उसको मोहब्बत होगी, वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसका एहतराम करेगा और उसकी खुशी के लिए काम करेगा। मतलब बीवी को एक चीज़ पसंद है, बीवी की मोहब्बत की वजह से वो उस पसंदीदा चीज़ उसके लिए ला कर देगा, उसके वालदैन का एहतराम करेगा। यानी तनहा ये नहीं है कि लड़की लड़के के वालदैन का एहतराम करे या उनके घर वालों का एहतराम करे,

0: वर्षा भी है, मतलब इधर से भी मामला है कि लड़के लड़का भी जो है वो अपने ससुराल वालों का एहतराम करे, क्योंकि उसको इसलिए नहीं कि ससुराल वालों की का एहतराम वाजिब है, नहीं, बीवी से मोहब्बत है। अब इस तरफ दूसरी तरफ से अगर इस औरत को अपने शौहर से मोहब्बत है, इनके आपसी ताल्लुकात अच्छे और खुशगवार हैं, तो अब अखलाकी फर्ज ये बनता है कि चूंकि वालदेन की मोहब्बत बेटे से जुड़ी हुई है और सास ससुर से जुड़ी हुई है, लिहाजा उनसे मुतालिक, उनसे मंसूब वो तमाम शख्सियात, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम काम उसको बीवी खुशी खुशी अंजाम देगी। और ये अखलाकी फरीजा, शरई फरीजा शायद ना हो, लेकिन ये अखलाकी फरीजा फिर ज़रूर हो जाएगा कि अखलाकन अपने शौहर की खुशी के लिए, और उधर से शौहर जो है अपनी बीवी की खुशी के लिए ये एहतराम और ये जो खदमात हैं उसको अंजाम दे।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। इसको मैं एक और एंगल से भी इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। जहाँ पे ये बात फंडामेंटल बात यही है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत और रिस्पेक्ट का पहलू आएगा तो ऑटोमेटिकली माहौल अच्छा बनेगा और दोनों जो है वो एक दूसरे के वालदेन की रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है कि अब जो सास है या ससुर है या नंदे हैं वो दूसरा पार्ट होते हैं, अगर वो लोग सही बिहेवियर ना रखें तो मियाँ बीवी के रिश्ते में आहिस्ता आहिस्ता जो है दरारें पड़ने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इन दोनों के रिश्तों को मजबूत करने के बजाय कमजोर कर रहे होते हैं, क्योंकि वही समझ रहे
0: बेशक
1: होते हैं, वही समझ रहे होते हैं कि हमारा बेटा या हमारा भाई हमसे छिन रहा है और वो जोरू का गुलाम बन रहा है और अब हमें टाइम नहीं देता, अब हमें हमारी केयर नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो हसद और वो गलत तवक्कुआत और वो तमाम चीज़ें जो है वो मिलकर वो इनके रिश्तों को कमजोर कर देती हैं और ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं।
0: वो
1: लेकिन
0: शायद
1: अगर इन
0: हुकूक से आशना ना होना, तरबियत ना होना,
1: जी
0: इन
1: बिल्कुल
0: तमाम चीजों की जड़ें जो है वो यहाँ पर हैं।
1: बिल्कुल
0: ये
1: ऐसे ही
0: इंसान
1: है,
0: हुकूक से
1: क्योंकि
0: आशना नहीं है,
1: दीन
0: तरबियत नहीं है, समझ नहीं रहा है कि जो
1: जी
0: रिश्ते होते हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जी सही कह रहे
1: ऐसे
0: हैं
1: ही है।
0: बिल्कुल आप।
1: अच्छा देखिए, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया ना जिस पे हमने बात कर ली, एक और एस्पेक्ट ये कि हम अभी जितनी भी बात कर रहे हैं ना, हम इस जहन में रख के कर रहे हैं कि लड़की घर में है। आज के दौर में आप देखें लड़कियां जॉब कर रही हैं, प्रोफेशनली लड़कियां काम कर रही हैं, करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, लड़कियां लड़के तो पहले भी करते थे लेकिन अब लड़कियां भी जॉब करने लगी हैं, तो अब इनके लाइफ डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए। अब आप एक्सपेक्ट करें कि वो लड़की जो है वो जॉब भी करे फिर घर में आके खाना भी बनाए और सफाई भी करे, तो ये एक खुद अगर मर्द करना शुरू हो जाए ना तो वो एक एक 2-4 दिन में उसके हाथ पैर फूल जाएंगे कि वो घर ऑफिस से आए थक के और फिर खाना बनाना शुरू हो जाए, फिर घर की सफाई में भी वो हाथ बटाए, तो ऐसा नहीं होता। इस्लाम आके आपको बताता है कि भाई ये मिलजुल कर अगर कोई चीज़ करनी है तो फिर उसमें सब शेयर करें, सब मिलजुल के करें, तो उसमें खैर बरकत मोहब्बत होती है ना। तो इंसान है, उसको अगर कोई इंसान थका हुआ आ रहा है और वो अपने लिए अगर उसने फिर कोई कुक रखा हुआ है तो ठीक है आप कुक रख लें, अब बाज़ दफ़ा आप कुक अफोर्ड कर सकते हैं, आप कुक नहीं रखते, आप कहते नहीं बहू ही बनाएगी या कोई और बनाएगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली देखना होता है कि भाई हम किस दौर में रह रहे हैं, इसके डायनामिक्स क्या हैं और इस वक्त बच्चों की हेल्थ किस तरह की है, उनके पास कितना फ्री टाइम है, उनके पास कितना टाइम है वो एक दूसरे को दें, जब मियाँ बीवी खुद ही जॉब कर रहे होंगे और बीवी आके घर में खाना भी बनाएगी 10 और काम भी करेगी तो वो मियाँ को कब टाइम देगी, बच्चों को कब टाइम देगी, फिर इमोशनल चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, फिर दूसरे इंटीमेसी के चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, फिर 10 और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, तो हमें ना बैलेंस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। ये इमाम अली ने कहा ना कि ये दुनिया जो है ना वो बैलेंस पर कायम है, तो हमें भी जिंदगी को मुख्तलिफ उमूर को बैलेंस करना होता है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो सारा झगड़ा जो है किचन से शुरू होता है और वो किचन से ही सारे फड्डे लेकर हम बाहर आते हैं और अपनी जिंदगी को खराब कर रहे होते हैं, जो सास बहू के असल अक्सर झगड़े होते हैं वो किचन की वजह से शुरू होते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे झगड़े लेकिन बुनियादी झगड़े इसी बात पे होते हैं, खाना नहीं बनाती है, अब खाना बनाती तो अच्छा नहीं बनाती, उसने मेरे किचन को सही से नहीं रखा, मैंने बहुत अच्छे से रखा हुआ था, ये सारी बातें। अगर आपके इश्यूज किचन को लेके हैं तो आप किचन सेपरेट कर लें, आप अपने किचन को अपने तरह से चलाएं, वो अपने किचन को अपने तरह से चलाएं, आप सुकून से रहें, रहकर झगड़े करने से बेहतर है कि आप दूर रहकर इज्जत से मिलें और एहतराम से रहें, बजाय इसके कि आप साथ भी रहें कूड़े भी झगड़ा भी करें डिप्रेशन टेंशन एंग्जाइटी, और फिर मर्द जो है वो बेजार हो जाए दोनों से और फिर वो बाहर निकल जाए, वो बाहर अलग मसाइल हुआ उसको वो झेलता है। खैर ये टॉपिक अभी नहीं है लेकिन मैं सिर्फ इशारा करना चाह रहा हूँ कि ये झगड़ों की वजह से मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और फिर वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर नई ज़िंदगी आबाद करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आना शुरू हो जाते हैं और दूसरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, फिर घर देर

0: घर में देर से आते हैं, आते हैं सो जाते हैं, सुबह उठ के भी चले जाते हैं, फिर इनकी लाइफ खराब हो जाती है। जी
1: हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ शायद आप इसको इसकी तायद करेंगे कि कन्वर्सेशन जो होता है वो उसकी कमी होती है। अब कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उधर से ताना किसी ने दिया, इधर से किसी ने ताना दिया, कोई ना इत्तेफाकी हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उसके उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, गुफ्तगु नहीं करते हैं। जब बात नहीं करते हैं, गुफ्तगु नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सी शायद प्रॉब्लम्स जो हैं वो घर में क्रिएट होती हैं।
0: बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ना, हर चीज़ की जो बुनियाद है ना, एक जो असल बुनियाद है वो कम्युनिकेशन है ना। हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम फिजिकली करते हो या वर्बली करते हो या किसी भी तरह से करते हो, अगर कम्युनिकेशन ही रुक जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें फिर ठीक ही पड़ जाएंगी, सारे रिश्ते कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बात जो मोहब्बत होती है वो कम्युनिकेशन के जरिए होती है ना। जब अच्छी कम्युनिकेशन होती है, दिल को भाती है, तो इंसान को अच्छा लगता है उससे बात करना। इंसान उस इंसान से बात ही नहीं करना चाहता जो बदतमीजी से बात करता हो या कम बात करता हो या जवाब न देता हो, तो कैसे रिलेशनशिप कैसे बिल्ट होगी, एक एफिनिटी अफेक्शन बॉन्डिंग कैसे डेवलप होगी जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी। और जब भी कम्युनिकेशन हो और उसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या शिकायतें हो रही हो, तो फिर वो जगह में इंसान रहना नहीं चाहेगा, उसका मिजाज ही नहीं है, मर्द का मिजाज ही नहीं है कोई ऐसे माहौल में रहे। किसी भी इंसान का मिजाज नहीं है कि वो ऐसे माहौल में रहे कि जहाँ पे हमेशा नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी चीज़ें होंगी, तो कौन रहेगा उस घर में, कहीं कोई भी नहीं रह पाएगा। तो इस बात को लोग समझ नहीं रहे होते। और जहाँ पे भी मियाँ बीवी ये देखें कि उनकी कम्युनिकेशन कम होनी शुरू हो गई है, तो ये एक अलार्म है, ये एक अलार्म है कि अगर ये कम्युनिकेशन कम होती चली गई तो ऑटोमेटिकली मोहब्बत कम होनी शुरू हो जाएगी, तवज्जो कम होनी शुरू हो जाएगी, फिर उनके दिलों में दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं होगी, और फिर ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके ये कहीं और किसी और ट्रैक पर खुदा ना खास्ता चले जाएंगे। तो हमेशा अपने कम्युनिकेशन को जारी रखें, सारी रखें, क्लियर रखें, सिंपल रखें, और दिल की बात कहें एक दूसरे से, मौका देखें, महल देखें, उसके हिसाब से बात करें, तो ये रिश्ते मजबूत होंगे और अच्छी तरह डेवलप होंगे। कम्युनिकेशन इसलिए ना करें कि आप एक दूसरे को एक दूसरे पर बढ़तरी दिखाना चाहते हो या अपने आप को साबित करना चाहते हो कि मैं सामने वाले को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं सामने वाले को बता सकता हूँ मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ या मैं आपसे बेहतर हूँ या मैं आपसे बेहतर हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है वो ये हमें बताती है कि आप पोलाइट थे, आप हम्बल थे, आप काइंड थे, जबी तो लोग आपसे मोहब्बत करते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना, वो जो रंजिशें आजकल बढ़ रही हैं, मुश्किल आजकल बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही हैं, उसकी वजह ये कि बदकलामी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, झगड़े कर रहे हैं और मुंह जिसे कहते हैं कि एक दूसरे के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में फिर ये सास से भी इसी तरह होता है, सास को भी जवाब दे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उस वक्त खामोश हो जाएं, लेकिन आप भी पलट कर जवाब देती हैं, फिर वो कहती हैं ये तो कल की बच्ची है, मुझे जवाब दे रही है, फिर वो, और इस तरह टेंशन बढ़ती हैं घर में। ये
1: एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ और यहाँ पर है, वो छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वो शायद हमारे ज़र्फ और हमारा जो यानी क्या कहते हैं वो सतह सदर होता है, यानी जिसमें कहते हैं कि हमारा बड़ा दिल हम जो है नहीं रखते हैं वहाँ पर, और वो ये कि छोटी छोटी बातों को हम दरगुजर नहीं करते हैं। हम ज़ाहिरन एक ये बहुत बड़ी बात जो सास बहू वाले रिश्ते में देखने को मिलती है कि वो छोटी सी कोई बात हो गई है तो उसको सास ने उसको एक बड़ा इशू बना लिया है या बहू ने उसको एक बड़ा इशू बना के उसको मुंतकिल कर दिया है अपने मायके की तरफ। फिर वो
0: जी आपने बात बहुत असासी कही है, जी जी बहुत असासी बात आपने कही है यहाँ पे कि हम दरगुजर नहीं कर पाते, हमारी जरफियत जो है ना वो कैपेसिटी हमारी बहुत कम हो गई है। एक बात तो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी कही है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितने बर्दाश्त का मादा रखते हैं अपने अंदर, कितनी कुव्वत रखते हैं, कितनी वसत रखते हैं अपने अंदर कि हम जस्ट कर सकें चीज़ों को, एब्जॉर्ब कर सकें, ना कि हम रिएक्ट करें, फौरन रिएक्शन दें और फिर उसके इसके असरात भी मनफी आए ज़िंदगी में। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, एक दफ़ा रिएक्ट करना होता है और एक दफ़ा रिस्पॉन्ड करना होता है। तो जो लोग रिएक्ट करते हैं फ़ौरन उनको हमेशा नेगेटिव, फिर वो पशेमान होते हैं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझ के जवाब देते हैं, प्लान करके जवाब देते हैं, वो ज़्यादातर कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ज़र्फ़ कम रखते हैं ना, वो ज़्यादातर परेशान ही रहते हैं। और इंसान को अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि इंसान जो है ना अपनी ज़र्फ़ियत को बढ़ाए, खुदा उसकी मदद करे कि उसकी ज़र्फ़ियत बढ़े, क्योंकि आजकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है लोगों को। देखें अब इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में है, फिर ये वॉर के टेंशन अलग हैं, जॉब की जो है वो स्कैसिटी हो चुकी है, हर तरह के परेशानियां हैं जिंदगी में, प्लस

0: अपनी घर के अंदर भी अगर परेशानी रखेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे। तो चाहे वो सास हो या बहू हो या बेटा हो या ससुर हो, कोई भी हो, ये सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, इस पर बहुत खतरनाक हुआ हुआ है। कम से कम घर में तो हम सुकून से रहें, एक दूसरे को सुकून से रहने दें ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, जिसके लिए हम लोग आए हैं। फिर हम बच्चों की क्या परवरिश करेंगे, आप मुझे बताएं? आप ऐसे घर में कैसे बच्चे की परवरिश कर सकते हैं जहाँ पोल्यूशन हो, जहाँ पे हर रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, बच्चे के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए वहाँ पे? तो कैसी तरबियत करेंगे हम बच्चे की? आज हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला यही है। बच्चे जो नंबर वन कंप्लेन करते हैं वो यही करते हैं कि माँ बाप की तवज्जो हमारी तरफ है ही नहीं, माँ बाप
1: खुद
0: आपस
1: आपस
0: में
1: में
0: लड़ रहे हैं।
1: लड़ेंगे।
0: बिल्कुल खुद आपस में लड़ रहे हैं, ये बच्चे उनको अपना रोल मॉडल ही नहीं मानते। और आप सोचें कितनी अफसोस की बात है कि खुदावंद आलम ने माँ बाप को रोल मॉडल बनाया है पहला, और वो बच्चे अपने माँ बाप को रोल मॉडल ही नहीं मानते, अब उनको आइडियलाइज नहीं करते हो, तो फिर कहाँ जाएगा ये माशरा 10 साल बाद, 20 साल बाद? ये जो नस्ल ऊपर आएगी ये किधर जाएगी?
1: इन सब से बढ़ के अब आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है, हम इसको कंक्लूड करेंगे अपनी पूरी बात को। अजीम भाई, एक जो सबसे अहम बात है ये कि ये रिश्ते अच्छे होंगे तो माशरा अच्छा होगा। और इमाम ज़माना जलाल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के लिए एक अच्छा माशरा दरकार है। और अगर हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं होगी, और इस सोसाइटी की जो बुनियाद है वो घर होते हैं, ख़ानदान होते हैं, तो अगर हम आपस में झगड़ रहे हैं, अगर आपस में अपने घर का एनवायरनमेंट ख़राब किए हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इख्तलाफात हैं, सास बहू, नंद ससुर दामाद, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है जहूर के ऊपर। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि इसका
0: जी
1: इफेक्ट जहूर के ऊपर पड़ रहा है, और मौलाना ने, अल्लाह ने भी फरमाया है और रसूल ने भी फरमाया है, मौला ये उसूल है ये कि जो जहूर है इमाम का वो एक तरफ तो अल्लाह की मसलहत और अल्लाह के इल्म के ऊपर मुनसिर है, दूसरी तरफ से वो हमारे ऊपर भी मुनसिर है कि हमारा भी किरदार जहूर में है, कि हम जितनी जल्दी तैयार हो जाएंगे जहूर के लिए उतनी जल्दी मौला का जहूर हो जाएगा। दरीकत मौला के
0: बिल्कुल
1: जहूर में ताखीर वो
0: बिल्कुल
1: हमारा घरेलू इख्तलाफात है,
0: बिल्कुल
1: हो
0: सही,
1: सकता है एक एक जो उसका
0: एक
1: अहम
0: फैक्टर यही
1: वजह
0: है। जी
1: कि
0: जी
1: इस पर
0: बिल्कुल
1: अगर
0: सही
1: थोड़ी
0: है,
1: सी रोशनी
0: बहुत
1: डाल।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि सोसाइटी जो वजूद में आती है वो घरों से आती है ना, मुख्तलिफ घर में के अफराद जमा होते हैं तो सोसाइटी बनती है। और इमाम जब इंशाल्लाह जरूर फरमाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले अदल को कायम करेंगे ना। तमाम अंबिया जो आए उन्होंने अदल का पैगाम दिया, उनका एक बड़ा पैगाम जो था वो सोसाइटी में अदल लेकर आना था, क्योंकि जुल्म होता था सोसाइटी में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने शिर्क के मुकाबले में तौहीद को लेकर आए, तौहीद लोगों को तौहीद की तरफ, तौहीद महव जिंदगी बनाई, और फिर अदल की दावत दी। और यही इमाम अली के दौर में, यही तमाम अम्बिया के आईम अलैहिस्सलाम के दौर में सब ने अदल के लिए काम किया, अदल के क्याम के लिए। और इमाम का जब जहूर होगा तो वो अदल कायम करेंगे। तो सवाल ये है कि हम कहाँ जाएंगे फिर? ये फैमिलीज जो अपने घर में ही अदल नहीं कर सकती, ये एहसान नहीं कर सकते एक दूसरे पर, ये हमारी फैमिली जाएगी किधर? क्या इमाम के आवान अंसार में हमारा शुमार होगा? क्या
1: काम ही नहीं आ सकते इमाम
0: खत्म?
1: के,
0: बिल्कुल,
1: इमाम
0: इमाम
1: के
0: कबूल ही
1: काम
0: नहीं
1: नहीं आ
0: करेंगे
1: सकते
0: ना,
1: हैं।
0: नहीं आ सकते ना। इमाम कहेंगे कि भाई आप तुमने अपने घर में अदल नहीं किया, तुमने अपने बीवी बच्चों के साथ अदल नहीं किया, तो तुम मेरे टीम में कहाँ से आ रहे हो? मैं तो अदल करो तो सबसे पहले तो हमारी शामत आ जाएगी कि
1: जी
0: आप अदल कर नहीं रहे, आप हमारी टीम में ही नहीं आ सकते, बल्कि आप जुल्म कर रहे, तो अब आप जाए उस तरफ। तो हमें तो
1: जी
0: इसीलिए देखिए, हर जुमे के खुतबे में इंसान को दावत दी जाती है, हर एक को हर प्रोग्राम में दावत दी जाती है तकवा की,
1: तकवा और
0: लाल
1: अदल की।
0: लकुम तत्तकून। वो तकवा है
1: जी
0: ही ना, तकवा यानी आप अदल करते हैं, जबी तो आप मुत्तकी बनते हैं। अगर आप अदल ही नहीं करेंगे तो मुत्तकी कैसे बनेंगे? और दीन भी आपको अदल इंसाफ की दावत देता है, ताउन की दावत देता है, ताउन तकवा।
1: बिर्रे
0: ये हमें तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, अगर यही हम घर में नहीं कर पाएंगे, यानी तालीम और तरबियत की कमी है, दीन के शऊर की कमी है, और प्रैक्टिकल रोल मॉडल्स की कमी है। हमें रोल मॉडल्स देने, हमें मुरब्बी देने लोगों को, ताकि लोग देखें कि हाँ ये लोग भी तो है जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक और मसला ये भी है कि हम अच्छे लोगों को हाईलाइट ही नहीं कर पाते, कि जिसको देख के हमारी नई नस्ल जो है ना उनको अपना रोल मॉडल बनाए ना। हमने अपने आइम्मा को इस तरह पेश किया है ना, हमने अपने जो खवातीन हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम की, ना हमें उनको इस तरह से रोल मॉडल बना के पेश किया है। हमने कोशिश जितनी भी की है वो कम है, बहुत ज़्यादा हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनकी पर्सनालिटीज़ को समझें और हमारी खवातीन उनके किरदार को अडॉप्ट करें। मजलिस में हम सुनते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन बाहर निकल के अमल ही नहीं करते। सारी बातें तो हो जाती है।

0: मजालिस में और इबादत में हर जगह, लेकिन अमल के मैदान में हम जीरो
1: अमल में दूर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त हमारा जो है वो कम है, तो इसलिए हमको अपने गुफ्तगू समेटना पड़ेगा और इजाज़त हम लेंगे अपने जो नाज़रीन हैं उनसे। बस एक ही आखिरी नुक्ता जो था कि हमारे घर का इख्तलाफ, हमारे लड़ाई झगड़े आपस के, सास बहू के टेंशंस, ये ज़बरदस्ती की का जो है वो अना और ईगो का इस्तेमाल करना हो सकता है कि ये हमारे इमाम की नाराज़गी का सबब बने और उनके ज़ुहूर में ताखिर का सबब बने। ये सोचने का मकाम है, अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, मौला को राज़ी करें और हम अपने मौला के ज़ुहूर में किरदार अदा कर सकते हैं, वो किरदार अपने इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करके अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, इंशाल्लाह नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक नए किसी और टॉपिक के साथ फैमिली इशूज़ को लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अमान अल्लाह।